0: पत्थर की देवी, तू मान ले मेरा कहना, आज बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना, मेरे दिल का कमरा खाली है।
1: मिस कम कम
0: मेरे